0: ही रह जाने का लोग बचना कब रह जाने का ठीक है ठीक है
1: قال هي راودتني عن نفسي.